माता प्रीत करे पुत खाए, मीने प्रीत पही जल नाहे, सतगुर प्रीत गुर सिख मुख पाए। ते हर जन हर मिलो हम प्यारे, जिन मिलिया दुख जाए हमारे रहाओ, ज्यों मिल बछरे गो प्रीत लगावे। कामण प्रीत जा फिर घर आवै, हरजन प्रीत जा हर जस गावै, सारंग प्रीत बसै जल धारा, नर प्रत प्रीत माया देख पसारा, हरजन प्रीत जपै निरंकारा, नर प्राणी प्रीत माया तन खाटे, गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे, जन नानक प्रीत साध पग चाटे, गौड़ी गुआरेरी महला चौथा, भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए, भूखे प्रीत होवै अन्न खाए, गुरसिख प्रीत गुर मिल आगाए, हर दर्शन देव हराश तुम्हारी, कर कृपा लोच पूर हमारी, रहाओ चक वे प्रीत सूरज मुख लागै, मिले प्यार सब दुख त्यागै, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागै, बछर प्रीत खीर मुख खाए, बिहरदा बिगसै देखै माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए, होर सब प्रीत माया मोह काचा, बिन सजाए कूड़ा कच पाचा, जन नानक प्रीत तिप्त गुर साचा, गौड़ी गुआरेरी महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बणी, जित मल हर नाम ते आया हर धनी, जिन हर जपया तन पीछे छूटी घणी, गुरसिख हर बोलो मेरे भाई, हर बोलत सब पाप लै जाई रहाओ, जब गुण मिलया तब मन वसाया, तावत पंच रहे हर त्याया, अंदर नगरी हर गुण गाया, सतगुर पाग तुर जिना मुख लाई, तिन कूड़ त्यागे हर लिवलाई, ते हर दरगह मुख उजल पाई, गुर सेवा आप हर पावै, कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावै, नानक गुरमुखर आप तरावै, गौड़ी गुआरे रे महला चौथा, हर आपे जोगी डंडा तारी, हर आपे रव रिया बनवारी, हरे आपे तप तपै लाए तारी, ऐसा मेरा राम रहा भरपूर, निकट वसै नाही हर दूर राव, हरे आपे शब्द सुरत तने आपे, हरे आपे विखै विकसै आपे, हरे आप जपाए आपे हर जापे, हरे आपे सारंग अमृत धारा, हर अमृत आपे अमनहारा, हरे आप करे आपे निसतारा, हरे आपे बेड़ी तुलहा तारा, हरे आपे गुरमति निसतारा, हरे आपे नानक पावै पारा, गौड़ी बैरागण महला चौथा, सौ हमारा तू तनी जैसी तू, रास दे तैसी हमले, हर नाम वणजै रंग स्यों, जे आप दयाल होए दे हम जारे, राम के हर वणज करावै दे रास रे रहाओ, लाहा हर भगतन खटिया, हर सच्चे सामन पाया, हर जप हर बखर लद्दिया, जम जा गाती नेड़ ना आया, होर वणज करै व्यापारिये, अनंत तरंगी दुख माया, ओए जे है वणज हर लाया, फल ते हा तिन पाया, हर हर वणज सो जन करे, जिस कृपाल होए प्रभ देई, जन नानक साहब हर सेव्या, फिर लेखा मोल ना लेई, गौड़ी बैरागन महला चौथा, जो जननी गर्भ पालती, सत की करे आसा, वड्डा होए तन खट दे, कर भोग बिलासा, त्यों हर जन प्रीत हर राखदा, दे आपा थासा मेरे राम, मैं मूर्ख हर राख मेरे गुसैया, जन की उपमा तुझे वडैया, रहाओ मंदिर कर आनंद, हर हर जसमन भावै, सब रस मिठे मुख लगै, जा हर गुण गावै, हर जन परवार साधार है, एक ही कुली सब जगत छड़ावै, जो कुछ किया सो हर किया, हर की वड्याई, हर जी तेरे तू वरतदा, हर पूज कराई, हर भगत भंडार लहाइंदा, पे वरताई, लाला हट व्याजिया क्या ते चतराई, जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को, हर नाम कढ़ाई, जन नानक हर का दास है, हर की वड्याई,
ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੀ ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਿਰਸਾਣ ਕਰੇ ਲੋਚੈ ਜੀ ਲਾਏ ਹਲ ਜੋਤਾ ਉਦਮ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਧੀ ਖਾਏ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਕਰੇ ਹਰ ਅੰਤ ਛਡਾਏ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਗਤ ਕੀਜਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਹਰ ਲਾਏ ਹਮ ਕਾਮ ਰਹਾਉ ਲੈ ਤੁਰੇ ਸੌਦਾਗਰੀ ਸੌਦਾਗਰ ਧਾਵੈ ਤਨ ਖੱਟਾ ਆਸਾ ਕਰੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਵਧਾਵੈ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਬੋਲ ਤਾਰ ਬੋਲ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਬਿਖ ਹੰਚੈ ਸੰਚੈ ਹਟਵਾਣੀਆ ਬਹਾਟ ਕਮਾਏ ਮੋਹ ਝੂਠ ਪਸਾਰਾ ਝੂਠ ਕਾ ਝੂਠੇ ਲਪਟਾਏ ਤਿਉ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਿਆ ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਏ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਕੁਟੰਬੈ ਭਾਇ ਦੂਜੈ ਫਾਸ ਗੁਰਮਤੀ ਸੋ ਜਨ ਤਰੈ ਜੋ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਨਿਤ ਦਿਨ ਸਲਾ ਰਾਤ ਲਾਲਚ ਕਰੇ ਭਰਮੈ ਭਰਮਾਇਆ ਵਿਗਾਰ ਫਿਰੈ ਵਿਗਾਰੀਆ ਸਿਰ ਭਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜੋ ਗੁਰ ਕੀ ਜਨ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸੋ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਹਰ ਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਤੋੜ ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਲਾਏ ਨਿਤ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਏ ਰਹਾਉ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰੇ ਨਰਪਤ ਰਾਜੇ ਅਰਥ ਸਭ ਮਾਇਆ ਕਹਿ ਬੰਧਾ ਕਹਿ ਡਾਨਲੇ ਕਹਿ ਨਰਪਤ ਮਰ ਜਾਇਆ ਧਨ ਧਨ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਜਿਤ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪ ਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਿਤ ਸੌਦਾ ਸੂਦ ਕੀਚੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰਮਾਇਆ ਕਹਿ ਤਾਈ ਜਾਂ ਲਾਹਾ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁਖ ਮੰਨੇ ਤੋਟੈ ਮਰ ਜਾਈ ਜੋ ਗੁਣ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰ ਸਿਉ ਕਰੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪਾਈ ਜਿਤਨੀ ਭੁੱਖ ਅਨਰਸ ਸਾਧੈ ਤਿਤਨੀ ਭੁੱਖ ਫਿਰ ਲਾਗੈ ਜਿਸ ਸਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੋ ਵੇਚੇ ਸਿਰ ਗੁਰ ਆਗੈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਸ ਤ੍ਰਿਪਿਆ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਮਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਹਰਿ ਆਸ ਨਿਤ ਕਿਉਂ ਦੇਖਾਂ ਹਰ ਦਰਸ ਤੁਮਾਰਾ।

साबे तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुरु सत गुरु संग की रे हम थापे, तन तन गुरु नानक जन के राज, जित मिलया चूके

नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगण सब मेरे रहाओ। किछ रूप नहीं, किछ जात नहीं, किछ ढंग न मे

पशु हो कर जानी सब कीता तेरा वर्तदा तू अंतर जामी हम जंत विचारे क्या करे सब खेल तुम स्वामी जन नानक हट व्याजया हर गुलम गुलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यो जननी सुत जन पालती राखे नदर मजार अंतर बार मुख दे गिरास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता।

कोई जानो किसी का किछ हाथ है, सब करे कराया जरा मरा ताप, सिरत साप सब हर कै बस है, कोई लाग न सके बिन हर का लाया। ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावो, जन नानक जो अंति असर लै छाया। गौड़ी बैरागन महला चौथा, जिस मिलया मन होए आनंद, सो सतगुर कही है मन के दुविधा बिन सजाए, हरम पहर परम पद लही है। मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिला, खिन खिन

कर कृपा हर मिलया मेरे सतगुर पूरा इच पुन्नी जन केरी आले सतगुर धूरा हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुनै तिथ सतगुर मिलिया टोटा मूल न आवे हर लाभ नित दृढ़िया।

चलिया है दुख है। सो क्यों विसै मेरी माए, साचा साहिब साचा ना रहाओ। सच नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई।

सतगुरु प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगमा पारा सब त्यावै है सब त्यावै है तुझी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर थिया भो संतो जी सबदू

जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेवा है जो सेवा है तुझी जानक तेनू कुर्बाना हरत्या वह है तुझी से जन जुग मैं सुख वासी से मुक्त पए दिन हरत्याया जी तिन तूटी जम की फांसी जिन निरभाओ जिन हर निरभाओ त्याया जी तिनका पाओ सब गवासी जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तेन बल जासी।

महल्ला चौथा। तू करता सचारू मैडा साई, जो तो पावै सोई थी सी, जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनू कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियावो सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल। जिसनो तू जाना है सोई जन जाना, हर गुण सद ही आख बखाना। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुझ बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेख है जन सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सर्व रड़ै भई लिनवासा, पानी पावक तिन है किया। पंक जो मोह पाग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी आले। मन एक न चेतस मूड मनाओ, हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ। ना हो जती सती नहीं पड़या, मूर्ख मुगधा जन्म पया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरिया। आसा महला पंजवा। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिरन की एह तेरी मरिया। अवर काज तेरा किता ना काम, मिल साध संगत भाजू केवल नाम। सरंजाम लाग भाव जन तरन कै, जन मृथा जात रंग माया कह रहाओ। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा,

ही दस भीन चाव पाई पुनराक्षस का काटा सीसा श्री अस के तव जगत के ईसा पहु पर दृष्ट गगन ते पही सभी न्यान वधाई दई धन धन लोगन के राजा दुस्कुंदाह गरीबन बाजा अखल पवन के सृजन हारे दास जान महले उबारे कवि उबाचो बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबैत मुकाबहो आप हाथ द मोहि बचाबहो सुखी बसाई मोर परवारा सेवक सिख सबई करतारा मोर अच्छा निज कर दय कर सब बैरन को आज सुंगर पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ो कोई अबर न त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारी तारिया है चुन चुन सतर हमारे मारिया है आप हाथ जा मुझे अबर आए मरण काल का त्रास नवरिया है हूँ जो सदा हमारे पछाऊ श्री अस तो जो जो करे हो रक्षा राख ले हो महराखण हारी साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिव जी अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव की ओ वेदराज ब्रह्मा जू थी ओ जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहु मारा

अनिल अनाद संभ ताका मूड उचारण भेदाओ जाको भिन्न पावन भेदाओ ताको कर पाहन अनुमान तो महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेवाओ निरंकार का चीनत नह पेव।

जाओ पाई। नैन अग्रसा प्रथम नाऊ किशन बिशन कबू न त्याऊ कान सुने पहचान न तिन सौ लिव लागी मोरी पाग इन सौ माह कारक बार मारो बाहलो मैं किं कर थारो अपना जान करो रखबारो बाह गह की लाज विचार अपना जान मुझाए प्रत परियाए चुन चुन सत्तर हमारे मरियाए देख ते गो जग में दो चलाए राखिया मोहे और नंदलाए तुम माम करो सदा प्रतपारा तुम साहिमा दास सहारा जान

तो है अपना जान करूं प्रतपारा तू साहिब मैं किंकर थारा दास जान दा हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बाहर करो कविता बेद नाना कृष्ण जथा मत चित्र चारो चूक होई कबल सुधारो कबीर बाच दोहरा जो निज प्रभु सो कहा सो कहूं जग माहे जो ते प्रभु को त्याय है अंत सरो को जाह दोहरा हर हर जन दोई एक है बेबिचार का छंडाहे जल ते उपत रंग जाऊं जल ही बिखा समाय दोहरा जब आए सुप्रभ को पयो जन्म तहरा जग आए मैं कथा संक्षेपते सब हूँ कैत सुनाई कबा चुंदोहरा ठाड़ पयो मैं जोर करूँ बचन कहा सुन आए पंत चला तब जगत माए जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुम्हारे ध्यान को नित उठ त्याय है संत अंत लहंगे मुक्त फल पावहंगे भगवंत दोहरा कालपुर की देह मो कोटक बिशन महेश कोटिंदर ब्रह्मा कितय राक्षस क्रूर जले सौ दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भागत ने तो सुर्ग बासरग बरकरार सगरी पुरी समेत चौपाय जो एह कथा सुनै अरगावै दुख पाप तेह निकट न आवै बिसन भगत की ए फल होई आद बया छुप सकै न कोई सम्मत सत्रह सास पचा बढ़ो हाड़ वधि प्रथु सुख दा बंडो तै प्रसाद करु ग्रंथ सुधारा भूल परि लह लो सुधारा दोहरा नेत्र तुम के चरण तर सद्रव तीर्थ रंगो श्री भगवत पूर्ण की ओर अकबर कथा प्रसंग साध असाध जानो डही बास बात बिपाद ग्रंथ सकल पूर्ण की

0: कीर्तन दी इतनी हाजरी प्रमाण करना जी पुस्तक दिखीवा सतगुरु गरीब नवाज सब दा पढ़िया सुनिया लेखे लाउण गुरु चरणा नाल बण आवे आओ सरण करिए महीने दी आरंभता दे श्री मुखवाक दी कथा संगरांद वाले दिहाड़े दी ज्ञानी दर्शन सिंह जी सरण करणगे जी वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह।

0: Drugim lasu. Lasem.
1: Jak to ciąg tygde.
2: Vaheguru Ji, Satnam Sri Vaheguru Sahib Ji, Hum Avgun Parhek Guna Nahi, Amrit Chhad Bikha Bikh Khai, Maya Moh Parm Pai Phule, सुत धारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो शरणाई महादिवस मूरत पले जिस को नदर करे नानक मंगै दरसुदान कृपा करहो हरे बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन माना परतख गुरु निस्तारे ज्यों बुलावह त्यों बोलह स्वामी कुदरत कमन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी साध संग नानक जस गायो

0: पाए।
1: सो संत साध संग जी ए संत पद के बहुत अर्थ ने, संत सतगुरु वास्ते भी वरत्या सच्चे पातशाह जी ने। भाग होआ गुर संत मिलाया, आप जी दे बचन ने प्रभ बिनासी घर मह पाया। सेव करी पल चसा ना विछुड़ा, जन नानक दास तुमारे जी। हौ कोली जी घोल कुमाई, जन नानक दास तुमारे जी। शब्द हजारे बाणी आप आप जी की पढ़ते हैं। गुरु रामदास जी दे सामने आप जी ने संत शब्द सतगुरां नूं वरत्या सी। प्रभ बिनासी घर मह, घर विचों ही सच्चे पातशाह ने प्रभु स्वरूप गुरु जी बख्शिश किते मिला दिते। संत रूप छां प्यकरा सिरदा, सतगुरु का वाचक भी है ते संत अकाल पुरख का वाचक भी है वाहिगुरु का। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपनी बाणी विच चौबी अवतारां की कथा शुरू दे विच उत्थे महाराज लिखते ने बड़े सोहने बचन भी, संत समय संत पर होत सहाई, तां ते संख्या संत बताई। जो संत अंत वेले अपने प्यारे साधु संत दे भगत दे अंतले वेले जो रख्या करदा आके प्रगट हुंदा है, सहाई करदा है, उन्हूं आंच नहीं आउण दिंदा। जे कोई भगत नूं जान कढदा होवे, उहदी विरोधी होवे हरनाक्ष वर्गा, सलेम शाह बादशाह वर्गा, जिवें नामदेव नूं कहिंदा सी हुणे ही तेरी गर्दन कट दूंगा, प्रहलाद नूं भी इहो कहिंदा सी हरनाक्ष कित्थे आ तेरा रब, हुणे हुणे दसदा तैनूं मैं, तलवार कढ लई सी। अंतले समय उस वेले ऐन सिर ते आई तो जदों सहायता करदा उह संत है अकाल पुरख सच्चे पातशाह। सो मोड़तियां सी तलवारां, हरनाक्ष दियां कुंडियां हो गईयां सी, चीकां पै गईयां सी। सो ऐसा वो महाराज ने कहा समय संत पर होत सहाई, जब अंत समय संत भगत दे सहाई सहायता करन वाला है, अपना प्रगटावा करके अपना विखावा करन वाला भी मैं हैगा है। उदा बिरदया हर जुग जुग भगतो पाया, पैज रखदा आया राम राजी, हरनाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया। सो ऐसा वो वाहिगुरु संत है, तां ते कहिंदे इस वास्ते असीं उहदी वाहिगुरु की गिणती भी संतां विच ही दसी है, तां ते संख्या संत बताई। ते इस तरह संत जिहड़ा सवास सवास जपदा है बंदगी करन वाला रब दा प्यारा, किसी भी धर्म विच सारे धर्मां विच हुंदे ने जिन्हां सास ग्रास नूं डेफिनेशन इह दित्ती पावन बाणी ने, जिन्हां सास ग्रास नूं विसरा हरनामा मन मंत, धन से ही नानका पूर्ण सोई संत। वो पूर्ण महापुरश धनता योग भी हो, पूर्ण भी हो, सोई संत भी हो ही ने। इदों वड्डा कोई होर बंदगी का परिभाषा नहीं मिल सकती। सास ग्रास उठद्या बहद्या सौद्या खाद्या पीद्या हरेक सुस न बंदगी करनी, वो संत है। दूजा चौथे ने गुरसिख, गुरसिख भी संत ने, क्यों गुरु रामदास महाराज जी ने बचन किया इन्होंने मुताबिक, जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर सो गुरसिख गुरु मन भाव है। गुरसिख भी पूर्ण महात्मा संत होंगे ने। सो इस तरह संत नाम पखंड का भी है, जेडे लोग पखंड करते हैं साध संग जी, ये भी दसम पातशाह की बाणी आप नितनेम पढ़ते हैं कि संत समूह नेक मती के लिबास पा के, तो बहुत देश दे विच फिरदे ने, बड़े तरह के लिबास पाए हुए ने लोगों ने, नाना तरह के भेख बनाए हुए ने, भेखधारी जेडे उन्होंने भी कहा संत समूह नेक मती के, नेकां तरह के, पर सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के, किसी ने प्राण पति अकाल पुरख दे दिदारे नहीं किते हैं, मिलाप किसी का नहीं है। इत्थे भेखाधारियों का नाम भी संत है। इस तरह कई अर्थ बनते ने, संत सहाई प्रेम के हो तिन कै लागा पाए। प्रेम का थोड़ा जा उछाला बजिया सोहनी रुत करके, तो सोचाना बनी प्यास बनी वाहिगुरु नूं मिलण दी, हुण परपक्क होवे ते दिदारे किवें। हीला वसीला की है, वो है रब दे प्यारे जिहड़े आप मिले हुए ने, सुआह सुआह जपन वाले साध संगत सत संगत साधुआं दी संगत संत सहाई प्रेम। आप ही सच्चे पातशाह जवाब दिंदे, वो प्रेम परपक्क हुंदा है, लगन फिर टुटदी नहीं। संत सहाई प्रेम के हो तिन कै लागा पाए। वो संत है भाई, फिर अगों पता लगता है कि संत महात्मा प्रेम लाउण दे विच सहायता करदे ने, प्रपक करन विच। असीं उन्हां दे चरणां नाल जुड़े हाँ, उन्हां दे अगे झुके हाँ। भगत रविदास साहब जी ने भी यो कहा पावन बाणी कि साध संगत तो बिना प्रेम प्रपक नहीं हुंदा है, नहीं तो पैदा होके भी हट जाता है। कई बार मन में हुंदा ना, पैदा हो जाता भी आप हुण सिखी रखांगे, वाह वाह किन्ने सोहने लगते हैं गुरसिख, किन्ना आनंद आ। जदों घरे जांदा तो फिर उस तरह का ही, फिर सब कुछ हट जाता। ये अटैचमेंट करनी पैंदी साध संगत नाल, रब दे प्यारिआं नाल, जिन्हां दा आपदा हिरदा निशकाम हुंदा उन्हां दा प्रभाव हमेशा ही पैंदा है। इस करके क्या साध संगत बिना भाव नहीं उपजा, ये उत्तों उत्तों छाला कई बार वजदा है तो हिरदे विच प्रपक नहीं हुंदा। ते साध संगत जदों करीदा, साध संगत तो बिना वो जिहड़ा हिरदे दे विच प्रेम पैदा नहीं हुंदा, परपक्कता जिहदे नाल आउणी हिरदे विचों मन विचों प्यार पैदा होना, जिहदे सो करके फिर रस पैदा हुंदा। सो साध संगत बिना भाव नहीं उपजा, भाव बिन भगत ना होए। साध संगत तो बिना यह सच्चा प्रेम हिरदे दे विचों पैदा नहीं हुंदा, ते उस प्रेम तो बिना भगती नहीं हुंदी है। नहीं तो बंदा लगता हट जाता, लगता हट जाता, छकदा भी आ फिर ला दिंदा संगत विच जाके अमृत, ऐसा भी हुंदा रहिंदा। साध संगत जरूरी है। कह रविदास इक बेनती अरसो पैज राखो राजा राम मेरी। भगत रविदास साहब जी एडे भगत ने, कहिंदे साध संगत दे नाल अटैचमेंट हर वेले होनी जरूरी, तां कि प्रेम दे विच फर्क ना पवे। सच्चे पातशाह मेरी पैज रखो, मेरी इहो ही बेनती तुहाडे अगे भी, ये प्रेम साध संगत दे नाल जुड़े रहिए, ये नहीं पैदा हुंदा साध संगत तो बिना। तां ही सच्चे पातशाह इत्थे दर्शा रहे ने कि संत सहाई प्रेम के हो तिन कै लागा पाए। मैं उन्हां दे चरणां ते लगदा जिग्यासु गो, संत आ भाई प्रेम लाउण दे विच प्रपक करन विच सहायत हुंदे हन, उन्हां दी संगत विचों रंग चढ़दा है। साधु दा संग नाम दा रंग निस्त

फिर ऐसा ज्ञान हो जाता भी सच्चे पाश जो रब दे प्यारियां दी संगत मिल जाती ना फिर प्रभु तो बिना सुख इको एक जिन्हों के अंदर खाश हूँ भी होर कोई सुख नहीं होर कोई वासना नहीं है वो एक रस रहन वाला प्रेम द्वारा प्रेमा भगती द्वारा ज्ञान जो हुंदा है वो आनंद रस ओदे दिदारियां नाल ही प्राप्त हुंदा है सच्चे पातशाह दे बिन प्रभ क्यों सुख पाई है हे प्रभु तेरे तो बिना किवें सुख पाई नहीं सुख प्राप्त होवेगा नहीं चैन आवेगा दूजी ना ही जाए तेरे तो बिना और कोई सच्चे पातशाह जगह भी नहीं है दूजी कोई थानू सानू थां भी नहीं है सानू और कोई आसरा भी नहीं है तेरी साध संगत तो बिना

रामदान श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे पंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी।

तोहे कौ सहस मूरत ननायक तोहि। सहस पद बिमल ननेक पद, गंध बिन सहस तब गंध विचलत मोहि। सब मह जोत जोत है सोए, तिसदा चानण सब मह चानण होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत पहावा स्वार्थी होए। हर चरण कवल मकरंद, लोभित मनो अंदिनो मोहे आहि प्यासा। कृपा जल देहे नानक सारिंग कौ, होए जाते तेरा नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु परेया। मिल साधु खंडल खंडा हे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मन हर लिव मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे। कर डंडौत पुन वड्डा हे, रहाउ साकत हर रस साधना जानिया। तिन अंतर हुमै कंडा हे, ज्यो ज्यो चलह चुभै दुख पावह। जमकाल सहह सिर डंडा हे, हर जन हर हर नाम सुमाणे। दुख जन्म मरण भव खंडा हे, अविनाशी पुरख पाया परमेसर। बहु शोभ खंड ब्रह्मंडा।

राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बेनंती सुनहो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलहो हरलाहा आगे बसन सोहेला औद कट दिन सरैनारे मन गुरमिल काज सुवारे रहाउ एहो संसार बेकार संसे मह तरयो ब्रह्म ज्ञानी जैसा जगाए पिया वै हुरस अकथ कथा तिन जानी जा कौ आए सोई बिहाजहो हर गुर ते मन है बसेरा निज घर महल पाव हो सुख सहजे

0: बादशाह मेनू बख्श, मैं भूल गया। हजूर कहन लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदरों हौमे अखां थाणी पानी बन के बाहर नहीं निकलती। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कह लग गया कि गुरु नू पता ही कोई नहीं। रो रो के भाई जोगा सिंह का मन हौला फुल हो गया। अदू कहन लगे जोगिया भूल गए हैं, हां पातशाह कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए हैं, तो जा तेन बख्शिया। आखो बस गल तो इतनी भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

संग न पायो अपने परते पीख पीख दुख पाया सारो दिन से मजूरी करता तहूं सुलह छारिया खेद भयो बेगारी न्याई कार कै काम न आया अनुग्रह जाको प्रभु को तिस हृदय नाम वसाया सार संगत कै पाछे परयो नानक जन नानक हर रस पाया टोडी महला बनवा कृपा निध बसो हृदय कृपा निध बसो हृदय हर नीत तिसै बुद्ध करहु प्रगासा लागे प्रभु संग प्रीत रह।

राव राजमाल अनेक भोग रस सगल तरवर की शाम ताहे ताहे बहु विद को तहवे सगल निवारथ काम बिन गोविंद अमर जे चाहो दिसे सगल बात है खाम कहो नानक संतन वेन मांगो मेरो मन पावे विश्राम रोडी महला पंजवा प्रभ जी को नाम मने साधारे जी प्राण सुख इस मन को बर्तन एह मारे रहा नाम जात नाम मेरी पत है नाम मेरा परिवार है नाम सखाई सदा मेरा संग हर नाम मोको निस्तार है विखै बिलास कहियत बहतेरे चलत न कछु सिंगार इष्ट मीत नाम नानक को हर नाम मेरे भंडार है टोडी महला पनवा के गुण गाओ मिट ही रोग मुख उजल मन निर्मल होई है तेरो रहै आओ हालोग रहाओ चरण पखार करो गुरु सेवा मन चराव भोग छोड आपत बाद अहंकार मान सोई जो होग संत रहर सोई है लागा जिस मस्तक लिखा लिखोग नानक एक दिन दूजा अवर न करना जोग टोडी महला पनवा सतगुरु आयो शरण तुम्हारी मैं सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी रहो अवर न सूजा दूजी ठाहर हर हार परयो तो द्वारी लेखा छोड़ लेखा छूटा हम निर्गुण ले हो बारी साध बख्शिंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी नानक दास।

तुझ बिन कान उधारे रहा। खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे, साध संग परम गत पहिए माया राच बंद हारे। चरण कमल संग प्रीत मन लागे सुर जन मिले पिहारे। नानक अंध करे जप हर जप, जप सगले रोग निवारे। टूटी महला पनिया घर तीजा चौप देख ओंकार सतगुर प्रसाद। हा हा लपट्यो रे मूड़े कछुना थोड़ी, तेरो नहीं सो जानी मोरी रहाओ। आपन राम ना चीनो खिनुआ, जो पुराई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बिसायो, छोड़ जाहे वासु चित लायो। सो संचयो जित भूख तिसायो, अमृत नाम तोसा नहीं पायो। काम क्रोध मोह कूप परिया, गुर प्रसाद नानको तरिया। टोडी महला पनवा हमारा एक है। हरी हरी आने वर स्याण ना करी राव, बड़े भाग गुरु अपना पायो। गुरु मुख हर नाम दृढ़ायो, हर हर जाप ताप व्रत नेमा। हर हर त्याय कुशल सब खेमा, आचार विहार जात हर गुनिया। महा आनंद कीर्तन हर सुनिया, कहो नानक जिन ठाकुर पाया। सब किश तिस कै ग्रह मैं आया। टोडी महला पनवा घर चौदह दो पदे ओंकार सतगुर प्रसाद। रूड़ो मन हर रंगो लोड़ै, गाली हर नीह न हो रहा। हाँ टुडे दी दर्शन कारण बीती बीती पेखा, गुरमुख परम गया है। एह बुद्ध पाई मैं साधु कन हो, लेख लिखियो तुर माथे। एह बिद नानक हर नैन लोयो, टूडी महला पनवा। गर्भ गहण लो मूड़ लो, ही हो रे ही हो महाराज री मायो। डीहर न्यायी मोह फाक्यो रे रहाओ, कणो कणो कणो साधु लोड़ै। बिन लहणे कैठ पायो रे महाराज, रोगा थो बाहो। सुन भड़ो न बहागड़ो, पाहे संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले प्राशत मिट्यो रे। जाको लैणो महाराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे। टोडी महला पनवा घर पनवा धूप दे ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दुख अरह रोग सतन ते सगल दूर कीन। रहा बंधन तोर शोर विखिया, ते गुर को शब्द मेरा ही अरह दीन। रूप अनुरूप मोरो कछ न विचार्यो, प्रेम गहयो मोहे हर रंग भीन। पेख्यो लालन पाठ बीच खोए, अनंत चिता हर खेप तीन। तिसी को ग्रह सोई प्रभ नानक, सो ठाकुर तुसी ही को तीन। टोडी महला पनवा माई मेरे मन की प्रीत, यही कर्म धर्म जप यही राम नाम निर्मल है रीत। राव प्राण आधार जीवन तहनु मोरै, देखन को दर्शन प्रभ नीत। बाट घाट दोसा संग मोरै, मन अपने कहो मैं हर सखा कीत। संत प्रसाद पे मन निर्मल, कर कृपा अपने कर लीत। सिमर सिमर नानक सुख पाया, आद जुगाद भगतन के मीत। डोडी महला पनवा प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमुख हीर। ते अपने भगतन को पूर्ण दान रहा, खोह भरम राख मेरे प्रीतम। अंतर जामे सुगड़े सुजान, कोट राज नाम धानु मेरे। अमृत दिष्ट तारो प्रभ मान, आठ पहर रसना गुण गावे। जस पूर्ण अघावे समर्थ कान, तेरी शरण जीवन के दाते सदा सदा नानक कुर्बान। टूटी महला पनवा प्रभ तेरे पक्की धूर, दीन दयाल प्रीतम मनमोहन। कर कृपा मेरी लोचा पूर राह, देह देस राव रहया जस तुमरा। अंतर जामी सदा हजूर, जो तुमरा जस गावे करते से। जन कब हूँ ना मरते चूर, तन तंद बंध बिन से माया के। साधु संगत मिटे बसूर, सुख संपत भोग इस जी के बिन। हर नानक जाने खूर। टोडी महला पनवा
माई मेरे मन की प्यास एक खेन रह न सको बिन प्रीतम दर्शन पेखर को तारी मन आस रहो सुमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिख बिलम बिमल जाको जास संत प्रसाद मेरे पूर्ण पनोरथ कर कृपा पीटे गुणतास शांत सहज सुख मन उपजियो कोट सूर नानक प्रगास रोटी महला पनवा हर हर पतित पावन जी प्राण मान सुखदाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुघड़ चतुर सब बेता रिद दास निवास भगत गुण गावत निमल रूप अनूप स्वामी करम भूम बीजन को खावन बिस्मन बिस्मन बिसम पे बिसमा दा आन न भी हो दूसर नाम न रसना सुमर सुमर जस जीवन नानक दास सदा बलो जामन टोटी महला पनवा माई माया छल त्रिन की अग्न मेघ की छाया गोविंद भजन बिन हाड़ का जल राव छोड़ स्याम गोचित रहे दुई कर जोड़ साध संग चल सिमर स्वामी अंतरगामी मानक देह काय हो उत्तम फल वेद बिख्यान करत साधु जन भागहीन समझत नहीं खल प्रेम भगत राचे जन नानक हर सिमरन दहन भहे मल टोडी महला पनवा माए चरण गुर मीठे बड़ा भाग दे वह परमेश्वर कोट फला दर्शन गुर डीठे रहा गुण गावत अच्युत अविनाशी काम क्रोध गुणसे साध माधे डीठे आस थेर भये साच रंग राते जन्म मरण बाहर नहीं पीठे बिनार भजन रंग रस जेते संत दया जाने सब झूठे नाम रतन पायो जग नानक नाम बिहून चले सब मूठे टोटी महला पनवा साध संग हर हर नाम चितारा सहज आनंद होवे दिन राती अच अंकुर भलो हमारा रहा गुरु पूरा पेटो मन भागी जाको अंत न पारा वारा कर गया काट लियो जने अपना विख सागर संसारा जन्म मरण काटे गुरु बचनी बहुड़ ना संकट द्वार नानक शरण गही स्वामी की पुनः पुनः नमस्कार टूटी महला पनवा माई मेरे मन को सुख कोट आनंद राज सुख भुख वह हर समृत बिसे सब दुख रहाओ कोट जन्म के किल विखनास है सिमरत पावन मन तन मन हर सिमरत बिसे सब दुख रहाओ कोट जन्म के किल विखनास है सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण पियासा दर्शन भेटत उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम धिन पर जात पार जात हर हर भुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ न दुख ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪਨਵਾ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਹਿਰਦੇ ਉਧਾਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹਮਾਰੇ ਰਹਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਪੂਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਕੀਰਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੁਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਠਾਕੁਰ ਅਗਨ ਅਪਾਰੇ ਜੋ ਜਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਖੀਨੇ ਤਿਨਕਾ ਮੋਰ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸੁਣ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਾਰ ਨਾਨਕ ਕੰਠ ਮੁਝਾਰੇ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਨਵਾ ओंकार श्री गुरु प्रसाद कहो कहा अपनी अदमा ही उर्जो कानक कामनी तेरा सो नह कीर्त प्रभ गाई रहो जग ठूठी को साचे जान कै तास रुचि उपजाई दीन बंद सिमरियो नहीं कब हो तो ना संग सहाई मगन रहो माया मैं इस दिन छुट्टी ना मन की काय कह नानक अब ना है अंत गत बिन हर की सरनाई डूडी बाणी भगता की ओंकार श्री गुरु प्रसाद

जिन का ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुरु सत गुर दान दिवायो रहाओ तिस जन को मन तन सब देव हर जिन हर हर नाम सुनायो धन माया संपै तिस देव जिन हर मीत मिलायो खिन किंचत कृपा करी जगदीश तब हर हर हर जस ध्याय जिन नानक को हर भेटे स्वामी दुख हमै रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण न गवावे रहाओ जो किस करे सो आपे स्वामी हरे आपे कार कमावे हरे आपे हिम्मत देवे स्वामी हरे आपे बोल बुलावे हरे आपे पंच तत् विसथारा विच धातु पंच आप पावे जन नानक सतगुरु मिले आपे हरे आपे झगर चुकावे बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोट कोट अंतर आपे पाके पाप सब खोवे हर भगत पार उतारा रहा काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरभउ निरवैर निरंकार हर निकट बस्त कछु नदर न आवै हर लादा गुरविचारा हरे आपे साहु सरा फिर तन हीरा हरे आपे की आप सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम हजे सो साहु सच्चा बनजारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर निरंजन निरंकार सदा सदा हर ध्याई सुखदाता जा का अंत न पारा वारा रहा अगन कुंट में उर्ध लिव लागा हर राखे उदर विंठारा सो ऐसा हर सेव मेरे मन हर अंत छिड़ावन हारा जाका हृदय बसया मेरा हर हर तिस जन को करहु नमस्कारा कर कृपाते हर कृपाते पाईऐ हर जप नानक नाम आधारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित ध्याए जो इच्छा सोई फल पावे फिर दुख न लागे आए रहा सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर सो प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन मह मिसर सब जाए तू बेअंत सर्व कल पूरा किछ कीमत कही ना जाहे नानक शरण तुम्हारी हर जीव भावे तिवै छड़ाए राग बैराड़ी महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद संत जना मिल हर दस गाय कोट जनम के देव गवाए रहा जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम दिवायो सर्व सुख हर नाम डाई गुरु प्रसाद नानक मत पाई राग तिलंग महला पहला कर पहला एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ति अजूनी साहिब गुरु प्रसाद यक अर्ज गुफ्तम पेस तो दर गोस कुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवरगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल जानी मम सर मुए अजराइल गिरफत है दिल हेच नादानी रहो जिन पिसर पदर बिरदाना बरादरा कस नेस दस्तगीर दस्तंगीर आखेर बेअफ्तम कस नादार दचू सबद तकबीर सब रोग गस्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल गाहे नाने के कार कुर्तम मम ई चीनी अहवाल बद बख्त हम

0: खाक तिलांगो महला पहला घर दूजा ओंकार सतगुर प्रसाद भाओ तेरा पहांग खलड़ी मेरा चीत मैं दीवाना पाया अतीत कर कासा दर्शन की भूख मैं दर मांगू नीता नीत तो दर्शन की करो सुनाए मैं दर मगत भीख्या पाए रहा केसर कुसम मृग में हरणा सर्व शरीर चढ़वा चंदन पत्ता जोत सर्वे परमल करना क्या पट पाता कह ना
1: तेरे नाम निवे रहे लाए नानक तन दर भीख्या पाए तिलंग महला पहला घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद ये तन माया पाया प्यारे लीतड़े लब लब रंग रंगाए मेरे कंत न भावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन से जे जाए हों करवाने जाओ मेहरबाना हों करवाने जाओ हों करवाने जाओ तना के लैं जो तेरा नाओ लैं जो तेरा नाओ तना के हों साध करवाने जाओ रहाया रहाओ काया रंजन दे थिए पाइये नौ मजीठाओ रंजन वाला जे रंजे साहेब ऐसा रंग न डीठाओ जिनके चोले रतड़े प्यारे कांतना के पास हो तूर तिना की जे मिले जी को नानक की अरदास हो आपे साजे आपे रंगे आपे नजर करे नानक कामन कांते पावे आपे ही रावे आपे ही रवे तिलंग महला पे एन या मारना